0: इस्तेमाल से 5 दिनों में पाए निखरा, शफाफ, बेदाग, गोरा चेहरा। बेहतरीन नतीज के लिए आसमानी फेस वॉश या आसमानी ब्यूटी सोप से चेहरा अच्छी तरह धोकर खुश्क कर लें। आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम की थोड़ी सी मिकदार लेकर चेहरे पर लेप करके हल्का सा मसाज करें। सुबह उठकर आसमानी फेस वॉश या आसमानी ब्यूटी सोप से धो लें। आसमानी कॉस्मेटिक्स जो नाम है एतमाद का। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टेक्ट अस 0345923286।
1: अस्सलाम वालेकुम।

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर
4: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में।
3: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क,
4: रेडियो अमन नेटवर्क।

0: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: रेडियो अमन, रेडियो अमन, रेडियो अमन, जज्बा है मोहब्बतें समेटने का, मोहब्बतें समेटने का, मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का, एक नई दुनिया बनाने, ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, एक अज्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का, एक जज्बा आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4,

0: हाँ जी गर को तस्वीर रेडियो अमन एफ एम अठासी शहरी चार बटा ग्राम जियो कल तरफ तो गुरु जी प्लान में सर सुख थी जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी
1: जी।

0: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM शुक्रिया आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: रेडियो अमन, रेडियो अमन, रेडियो अमन जज्बा है मोहब्बतें समेटने का, मोहब्बतें समेटने का, मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का, एक नई दुनिया बनाने का। ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, एक अज्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का, एक जज्बा आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4 खुश रहने का जज्बा।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 बटग्राम की इस्लामी नशरियात। हमारे साथ रहिएगा।

0: बदरजम।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 बटाग्राम की इस्लामी नशरियात। हमारे साथ रहिएगा।
2: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटाग्राम ट्यून किया।
1: रेडियो अमन, रेडियो अमन, रेडियो अमन, जज्बा है मोहब्बतें समेटने का, मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का, एक नई दुनिया बनाने, ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने, एक अज्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का, एक जज्बा आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4, खुश रहने का जज्बा। ग्रानो औरिदुन को तसो आवाज अवरेद रेडियो अमन 88.4 बट ग्राम।

ऑस्ट्रेलिया जा आईसीसी वेमेन्स टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप गटले दे इंग्लैंड तय वो विकटोसर शिकस्त वर्कड़े दे ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड त शिकस्त वर्क ओलूसरा वंजल आईसीसी वेमेन्स टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप गटले दे द आईसीसी वेमेन्स टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप फाइनल मैच के ऑस्ट्रेलिया द टॉस गटलो न बाद फील्डिंग कोलो फैसला कड़वा इंग्लैंड वेमेन टीम अवल बैटिंग कोलूसरा मुकर्रा ओवर्स के यूसल पंजोस रन जोड़ कड़ियो द ऑस्ट्रेलिया वेमेन्स टीम फाइनल मैच के इंग्लैंड तो वो विकेटों से शिकस्त वर कड़े दे पवा मुजली आईसीसी वेमेन्स आलमी टाइटल पनम कड़े दे वॉलीबॉल फीफा रवान फुटबॉल वर्ल्ड कप के ब्राजील ता घट शिकस्त मिलो शविदे द ब्राजील मैनाज लुबगाड़ी नेमार द रिटायरमेंट हस्तलो ऐलान कड़े दे नार्वे द कामयाबी न बाद क्वार्टर फाइनल के जय जोड़ कड़े दे फीफा रवान फुटबॉल वर्ल्ड कप प्री क्वार्टर फाइनल मैच के नार्वे ब्राजील त शिकस्त वर कड़े दे नेमार द रिटायरमेंट हस्तलो ऐलान कड़े दे फीफा वर्ल्ड कप प्री क्वार्टर फाइनल मैच के नार्वे पिंजर जिला आलमी चैंपियन ब्राजील त शिकस्त वर कोलोसरा इवेंट में बाहर कर दे क्वार्टर फाइनल तय क्वालिफाई कर दा उस अवरुद्ध मौसम हाल दो मौसमियात महकमे तरमाहत रुसलविश कंट्रो पर दौरान करकल की मरवत बनो और टांग खोश सिम के बरान शविदी जिन वालों के पासमान खाल खाल वेद मौसमियात महकमे लखवाबली शविदी चेरातुलन को सलिश कंट्रो पर दौरान करकल की मरवत बनो और टांग खोश जिन वालों को के दरान वरे दो इमकान दे अवली जिन वालों को की पासमान खाल खाल वेवी दो मौसमियात महकमे तरमाहा करकल की मरवत बनो और टांग खोश सिम के नंजियात नजियात दर्जा हरत नहादेश डिग्री सेंटीग्रेड और कम न कम पगिश डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड कर शवे और हवा की दिन मई तनासुब उदिश फीसद उदा हवा रफ्तार पक किलोमीटर यू घंटा रिकॉर्ड कर शवे दे अवली दूसरा करकल की मरवत बनो और टांग खोश सीम के बनवर सभा शहर दियार लस मिनट दपासा पिंज बजे सिरोही और महामत विश मिनट दपासा वह बजे बेवजी दौद रेडियो अमन अटसी अश्वर्य चार नेटवर्क हम खबरों धनुर हम खबरों दलुद पर रेडियो अमन अटसी अश्वर्य चार नेटवर्क सरऊ सई उस न्यूज टीम सरा मातरा कई इजत दलुअल पामान